0: घरे तो जूसेस ना
1: काय पाहिजे तुम्हाला
2: महान ना नमन सुसुनु तो कौन सा पेड़ी
3: मग जॉली सेवर्स काला यूम बर्गर तत्लुंपु Jolly Spaghetti Limampu, Burger Steak Limampu. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.